0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुं आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपंचाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः अष्टाशीत्यधिक अष्टशतोत्तर त्रीणि सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिलियम वेबको 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई मोबाइल एप न्यूज अन एआईआरमा पनि सुनिरहनु भएको छ।
4: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानको 7:05 भइसकेको छ र अब भने श्रोताहरूमा प्रस्तुत छ कार्यक्रम गान्धी कथा का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने

0: की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज

0: व जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई यह बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत।

0: भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिन्दुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है सुबह के 10:31 और 8 सेकंड। ये वक्त है कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स का, तो तैयार हो जाइए अपना संदेश और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम खोल चुके हैं अपने दिल का मेल बॉक्स। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और लिख भेजिए हमें अपने दिल का संदेश अपने नाम और अपने पते के साथ। ये मेल आपको भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, एक बार फिर नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com पर। दोस्तों, आप हमें कोई शायरी, कोई अच्छी लाइनें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो, वो भी लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे आज के प्रोग्राम में शामिल करें, और तब तक आप सुनिए ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म जानी दुश्मन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और बोल वर्मा मलिक के।

दोस्तों आइए अब रुख करते हैं दिल के मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश हमें किसका प्राप्त हुआ है। तो पहला संदेश हमें चंडीगढ़ सिटी से आया है सतीश अनेजा बिमला अनेजा का और ये लिख रहे हैं, नमस्कार भाई जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जी हम भी एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत बात कही है आपने और मुझे लगता है कि आज के समय पर इन

बातों का ध्यान में रखना और अमल में रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर गांव उत्तर प्रदेश से, और इसे लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लक्ष्मण लोखंडे का, महाराष्ट्र से ये हमें लिख रहे हैं। इनके साथ इस मेल में शामिल है कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे और रक्षता लोखंडे। इसी के साथ अगला मेल हमें उत्तम नगर दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इसे लिखने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है अफरोज शेख, पता नेमुआ, सुपौर बिहार से हमें लिख रहे हैं मेल। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगला मेल हमारे पास पहुंचा है मेरठ से, ये मेल हमें अनिल जैन लिख रहे हैं। इनके साथ जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम भी शामिल हैं इस मेल में। और अगला मेल हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का प्राप्त हुआ है। तो आपका भी बहुत स्वागत है इस मेल में। दोस्तों अगला मेल हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी दीवाना का प्राप्त हुआ है और ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

जी, और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं अशरफ अली, नवाब अहमद, बाबुल कश्यप, सलीम अख्तर। इसी के साथ अगला मेल हमें वीरमगंज जंक्शन से अजीत भावसार का प्राप्त हुआ है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं कि नहीं कोई फिक्र करता कुठारा घात करता है, हमारी पीठ पीछे वो हमेशा बात करता है, भरोसा तोड़ कर देखो दिए आंखों में आंसू, बस करे नाटक दिखावा भर बहुत उत्पात करता है, समझ आती नहीं उनको जो पहले से ही शातिर है, भरी महफिल में बस शब्दों की सुन बरसात करता है। भाई बड़ी ही अनुभव युक्त बात कही है आपने, तो इस सुंदर लाइनों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है ऊपर कोटा मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से और इस मेल को लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है शेरवानी स्कूल गंज गुड़वारा से और इसे लिख रहे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है मुंबई से और इसे लिख रहे हैं अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा और ये खूबसूरत लाइन भी शामिल कर रहे हैं अपने मेल में। ये लिखते हैं कि फूल देते खुशबू, फल देते मिठास, पेड़ चुपचाप निभाते रिश्ता खास, हरियाली का साया, ठंडी हवा की सौगात, पेड़ों के बिना अधूरी है सारी कायनात। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों शिव नारायण का जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश से ये मेल लिख रहे हैं और एक बेहद ही खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म नदिया के पार से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं आज के कुछ और स्पेशल संदेश जो आपने हमें लिखकर भेजे हैं, आज के प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लेते हैं। दोस्तों अगला मेल हमें मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं वर्मा सर जी वेलकम, तो जी आपका भी बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है कृष्णनगरी मथुरा से और इस मेल को लिख रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। अगला मेल हमें नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इस मेल को लिख रहे हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाब अहमद भारती का और इनके साथ इस मेल को लिख रहे हैं सलीम अख्तर। इन्होंने लिखा है आदाब सर जी, कोई भी सॉन्ग में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो देखिए जनाब, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से और इस मेल को लिख रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। इन्होंने लिखा है श्रीमान राम प्रकाश वर्मा जी नमस्कार, तो जी आपको भी नमस्कार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दतरेंगी से और इसे लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और इसी के साथ एक और मेल हमें मोहाली चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ है। माफ कीजिएगा, कई बार आप सही शब्द नहीं लिखते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइप करते वक्त ध्यान दें। ये मेल हमें लिख रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जी। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है सोमेश्वर उत्तराखंड से और ये लिखने वाले हैं दीपक जोशी, गणेश जोशी, विमला जोशी, माया जोशी, अजय, नेहा, शालिनी, आयुष और हिया। ये खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा।

दोस्तों डालें नजर मेल बॉक्स की तरफ तो कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं और ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का ये मेल हमें लिख रहे हैं चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है, राम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, एनी सॉन्ग में मैसेज ले लीजिए। तो देखिए हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का, ये मेल हमें लिख रहे हैं और साथ ही ये लिख रहे हैं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स पेश करता आदरणीय राम प्रकाश जी आपको सादर नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। आप लिख रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत दिनों बाद सुनकर हमें अच्छा लगा। तो जी आपका मेल बहुत दिनों बाद पढ़कर हमें भी अच्छा लगा। अगला मेल हमें रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन का मेल हमें प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं कि राम प्रकाश जी नमस्कार, कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, हमने आपको इस

खूबसूरत गीत में शामिल कर लिया। अगला गीत हमें, माफ कीजिएगा, अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल मक्कड़ का। और ये मेल हमें लिख रहे हैं, इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है, माफ कीजिएगा। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 11:25 पर कार्यक्रम तस्वीर के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों

0: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि विशाल यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इसका मतलब है कि इश्क वो तकलीफ है जिसका इलाज आसान नहीं होता। अपने किसी खास से मिलने की चाहत कुछ इस तरह से दिल और दिमाग पर छा जाती है।
1: जैसे जैसे अपने किसी खास से मिलने की चाहत पूरी होती है या मिलने की कोशिश की जाती है, वैसे वैसे इश्क और दीवानगी दोगुनी हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बीमारी का इलाज करने पर वो बीमारी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो।
0: इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपता। जैसे कि खुशबू को आप चाहे कितने ही कमरों में बंद क्यों ना कर दें, उसकी महक बाहर आ ही जाती है। ठीक उसी तरह किसी के दिल में छिपा हुआ प्यार भी लोगों की नजरों से छुप नहीं पाता, ये अपने आप जाहिर हो ही जाता है।
1: कहते हैं कि अगर एक बार किसी के दिल में सच्चे प्यार का एहसास हो जाए तो दुनिया की कोई भी मुसीबतें या रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी आंधी प्यार की इस आग को बुझा नहीं सकती।

0: मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, अब जब बात दिल और मोहब्बत की चली है तो फिर एक बात ये भी कह दी जाए कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि सच्ची मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती।
1: इसके लिए एक खास और पवित्र दिल की जरूरत होती है। जैसे हर धुन हर इंस्ट्रूमेंट पर नहीं बज सकती, वैसे ही प्यार के जज्बात हर साधारण दिल में नहीं पनपते। वैसे कहने को तो ना जाने कितने ही लड़के और लड़कियां आजकल ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें प्यार हो गया है और अब हम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे।
2: लेकिन सच इसके बिल्कुल अलग होता है। जरा सी दोस्ती को जो प्यार का नाम दे देते हैं, वो बहुत जल्दी इस रिश्ते से बाहर भी हो जाते हैं। फिर बहाना चाहे समाज का हो या परिवार के ना मानने का, लेकिन सच तो ये है कि उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता होता। वो बस टाइम पास करते हैं।
1: और ये जो टाइम पास करते हैं, उनके अलग होने के बहाने भी अलग होते हैं। वो कभी कहेंगे कि परिवार नहीं मान रहा, कभी कहेंगे कि क्या करूं, हमारी सोसाइटी तुमसे बहुत ऊपर है, या फिर तुम कमाते कितना हो।
2: बहाने तो बहुत हैं, मगर जिसका दिल टूटता है, दर्द वही जानता है।

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.

0: wajood.com पर।
1: वैसे अगर सच में कहा जाए तो प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं होता, बल्कि प्यार एक जिम्मेदारी है, एक विश्वास भी है। और जब दोनों ही चाहने वाले इस बात को समझते हैं तो उनकी मंजिल आसान हो जाती है। हो सकता है कि शुरू में किसी के परिवार वाले या किसी का समाज इस बात को ना समझे,
0: लेकिन जो दिल से साथ होते हैं वो परिवार को और समाज को ठीक से समझा ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग इस वजह से भी तैयार नहीं होते कि दोनों में से कोई शायद अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब ना हुआ हो,
1: तो आगे चलकर वो जीवन का बोझ कैसे उठाएगा, ये भी एक टेंशन की बात है। लेकिन अगर दिल में सच्ची चाह हो तो पुरुष हो या महिला, जिंदगी के किसी भी दौर में कामयाब हो सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी पैसा कमाने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। जरूरी है तो बस उन्हें समझने की जरूरत है, तो बस उन्हें समझने की।
0: अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने समवन स्पेशल की खुशियों का ख्याल रख सकते हैं या नहीं। वैसे कुछ भी कहा जाए, प्यार को चीज ही ऐसी है कि अगर किसी को दिल से हो जाए तो फिर दोनों ही लोग एक होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
3: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ।

0: ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meraewazod.com पर।
1: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
0: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद।
1: बताओ और कमाओ, तब तक के लिए आनंद
0: और अदिति को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हो चुका है सुबह के 11:25 और 44 सेकेंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम तस्वीर में।

आज के कार्यक्रम तस्वीर में हम आपकी आंखों के सामने लाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप घर बैठे ही इस गर्मी के मौसम में भी ठंडक का अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि आज जहां हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस जगह को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो भाई देर किस बात की, चलिए आपको लेकर चलते हैं इस बेहद ही खूबसूरत सुहाने सफर पर।

दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी मन चाहता है कि कुछ पल ऐसे मिल जाएं जहां सिर्फ सन्नाटा हो, पहाड़ों की ठंडी हवाएं हो, नीले आसमान के नीचे सफेद बादलों का कारवां हो और दूर तक फैली प्रकृति बस मुस्कुराती हुई ही दिखाई दे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही जादुई दुनिया में, जिसे देखकर लगता है कि मानो धरती ने यहाँ खुद अपने हाथों से स्वर्ग सजाया हो। और इस जगह का नाम है स्पीति घाटी। जी हाँ, स्पीति का अर्थ होता है मध्य भूमि, यानी भारत और तिब्बत के बीच की धरती। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए इलाकों में गिनी जाती है। यहाँ की सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और दूर तक फैली शांत वादियां हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। स्पीति घाटी में मुख्य रूप से स्पीति नदी बहती है और इसके साथ कई अन्य नदियां भी इस घाटी में शामिल होती हैं। स्पीति घाटी चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी होती है। इसके उत्तर में लद्दाख, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में बुशहर और पश्चिम में कुल्लू शामिल है। भारत और तिब्बत के बीच बसी इस घाटी ने सदियों से संस्कृति, आध्यात्म और प्रकृति को अपने आंचल में समेट रखा है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ प्रकृति अपनी खूबसूरती बरसाने में कोई कमी नहीं रखती और इसीलिए स्पीति में लगभग 250 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है। रात के समय यहाँ तारों की चादर दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में आसमान और तारे आपके बिल्कुल पास आ गए हों।

दोस्तों, स्पीति की पहचान केवल उसके पहाड़ ही नहीं है बल्कि उसकी आत्मा बसती है यहाँ के मठों में, और उनमें सबसे प्रसिद्ध मठ है की मोनेस्ट्री। तकरीबन 1000 साल पुराना ये बौद्ध मठ पहाड़ की ढलान पर इस तरह से बना हुआ है कि मानो बादलों ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया हो। सुबह जब यहाँ घंटियां बजती हैं तो पूरा वातावरण मंत्रों की मधुर ध्वनि से भर जाता है। यहाँ रहने वाले भिक्षु सादगी, धैर्य और प्रेम का संदेश देते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मन अशांत हो तो एक बार की मोनेस्ट्री की पहाड़ी पर बैठकर यहाँ का सूर्योदय देख लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर स्पीति की बात हो और चंद्रताल झील का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। चंद्रमा के आकार की ये झील समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह इसका रंग नीला, दोपहर में फिरोजी और शाम होते होते इसका रंग सुनहरा हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति हर घंटे कोई नई तस्वीर बना रही हो। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चंद्रताल का दृश्य जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों, चंद्रताल के अलावा यहाँ कई और भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे चीचम ब्रिज, धनकर झील और धनकर मठ, डेमुल गांव, काजा, कुंजी मठ, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंजुम दर्रा, लोसर, शेरखाग मठ, माने योगमा गांव, मिट्टी का गांव, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तावो मठ और उसकी गुफाएं, और हिक्किम गांव भी आप जा सकते हैं। हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है और यहां से भेजे गए संदेश यानी पत्र हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।

0: मीडियम वेभ 213.7 मिटर को 1404 किलोहर्ट्जमा यो आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्र हो।
1: QR कोड स्क्यान करो, 5000 का क्याशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं, साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 MHz अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी संसार।

0: हस्त श्रोता कलाकार उदित नारायण झा अनि अलका याग्निकको स्वरमा रहेको यसै गीतको साथ विभिन्न हिन्दी फिल्मी गीतहरू सुनाउने क्रम यही समाप्त हुँदछ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब प्रस्तुत छ खुशबु छेत्रीबाट हिन्दी भाषा पाठ।
1: नमस्ते म्याडम।
2: नमस्ते, त नानीहरू ठिकै छौ?
1: हजुर म्याडम।
2: नानीहरू, पाठ शुरू गर्न अघि रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका श्रोतावृन्द र साथीहरूलाई आफ्नो आफ्नो परिचय गराऊ है त।
3: हवस् म्याडम, मेरो नाम श्वेता राई हो।
4: मेरो नाम शिवानी बस्नेत हो।
2: परिचय पनि भइहाल्यो है त। नानीहरू, तिमीहरूलाई थाहा छ आज कुन विषयमा पाठ पढ्न गइरहेछौ?
3: थाहा छैन म्याडम।
2: केही छैन, म बताउँछु है राम्ररी सुन्ने। आज हामी हिन्दी विषयको मुहावरे शीर्षकमाथि पाठ पढ्न गइरहेछौ र सबैभन्दा पहिलो त मुहावरे भन्नाले के हो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। मुहावरा शब्द अरबी भाषाका है जिसका अर्थ अभ्यास, मस्क आदि होता है। वस्तुत शब्दों का ऐसा समुच्चय मुहावरा होता है जो अपने शब्द के निहित अर्थ को न देकर अन्य रूढ़ अर्थ का संकेत करता है और इसे कहावत भी कहते हैं। अर्थात शब्दहरूको यस्तो मेल जसको प्रयोग गर्नाले वाक्यमा सुन्दरता आउँछ र कुरालाई प्रभावशाली बनाउँदछ। तर मुहावरा शब्द जस्तो छ सोझ त्यस्तै अर्थ नलागेर अन्य रूढ अर्थ लाग्ने गर्छ। जैसे अंगारे उगलना, ये एक मुहावरा है। यहाँ अंगारे उगलना का मतलब सीधा वही न होकर कठोर वचन कहना, किसी को जली कटी सुनाना होता है। समझ रहे हो बच्चो?
3: जी मैडम।
2: नेपालीमा तुक्का भनेको त सुनेको छ होला, भन्छ नि कोही बेला कसैले, तिमी चाहिँ हावाको तुक्का नमार है, सुनेको छौ होइन?
3: हजुर म्याडम।
2: मुहावरे के कई उदाहरण है जो आप लोग आम जिंदगी में भी प्रयोग करते हैं। इसमें से कुछ इस तरह है, अंगारों पर पैर रखना। हम पहले भी कह चुके हैं कि जैसे दिखते हैं वैसा ही अर्थ मुहावरे नहीं देती है। यसै गरी अंगारों में पैर रखना को अर्थ सीधा सीधा आगो में खुट्टा राख्नु नभएर जोखिम का काम करना अथवा खतरा मोल लेना होता है। दूसरा वाक्य कमर कसना, यसको त नेपालीमा पनि प्रयोग हुन्छ। परीक्षामा आउने समय भएपछि आमा भन्नुहुन्छ नि, नानी परीक्षा आयो कमर कसेर पढ है, होइन? यसका मतलब होता है काम करने को तैयार हो जाना। इस तरह के अन्य मुहावरे भी है जो हम हिन्दी नेपाली दोनों में प्रयोग करते हैं।

0: शाबाश। तो आप इसको वाक्य में भी प्रयोग कीजिए।
1: अंशु ने छोटी बहन से कहा, चोट बहुत मामूली है, राय का पहाड़ बनाकर पिताजी से मत कहना।
0: शाबाश, तिमीले एकदम राम्रो बुझेछौ। अब तिमी शिवानी पनि यसै गरी अर्को मुहावरा भन त।
2: औस म्याडम, ताली एक हाथ से नहीं बचती, इसका अर्थ होता है झगड़ामा दोष दुई पट्टी को हुन्छ।
0: शाबाश, तो अब आप इसको श्वेता वाक्य में प्रयोग कीजिए।
1: राकेश और सुरेश दोनों को पैसे का अभिमान है, अतः मिलकर रहने के वजह झगड़ते रहते हैं। किसी ने सच कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती।
0: शाबाश, यसको प्रयोग बारे कसरी अर्थ लाग्दो रहेछ यस बारे तिमीहरूले राम्रोसँग बुझेछौ है। अब हामी कसरी मुहावरे को प्रयोग अनुसार अर्थ लाग्छ, वाक्यमा प्रयोग हुन्छ त्यस बारे जान्नेछौ, बुझ्यौ?
2: हवस् म्याडम।
0: प्रयोग के धरातल पर एक ही मुहावरा कई बार अलग अलग अर्थ भी दे सकता है। जैसे आंख लगना ही ले, सारी रात जागने के बाद अभी अभी आंख लगी है, इसका अर्थ होता है नींद आई है। दूसरा वाक्य देखो, जब से मैंने यह घड़ी खरीदी है उसकी इस पर आंख लगी है, इसका अर्थ होता है प्राप्त करने की इच्छा है। यसमा पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्यमा भिन्न भिन्न अर्थ लागेको हामीलाई थाहा लाग्छ। इसी तरह दूसरा उदाहरण है हात उठाना। बातो बातो में मैंने अपने दोस्त पर हाथ उठा दिया, इसका मतलब होता है गुस्सा से मारना। दूसरा वाक्य देखो, राजेश को माँ ने पानी भरने का काम लगाया था, पर बात सुनते ही उसने हाथ उठा दिया, इसका मतलब होता है काम करने से मना करना। यहाँ पे भी मुहावरे का दो अर्थ लगा है, पहले में गुस्सा से हाथ उठाना और दूसरा वाक्य में काम करने से मना करना। तो नानीहरू, मुहावरे कसरी परिस्थिति अनुसार अर्थ लाग्दो रहेछ, बुझ्यौ त?
2: बुझ्यो म्याडम।
0: त्यसो भए यस्तै एउटा मुहावराको अलग अलग प्रयोग बताऊ त। शिवानी भन।
2: कमर टुट्ना। दिनभर खडा रहने के कारण मेरी कमर टुट गई है। माँ कहती है महंगाई ने तो मेरी कमर तोड़ के रख दिया है।
0: शाबाश, तिमीहरूले त राम्ररी बुझेछौ अनि प्रयोग गर्न पनि जानेछौ। र अब आप भी यसै एक मुहावरा बताइए तो, जिसकी दो अर्थ लगते हो।
2: हवस् म्याडम।
1: ठिकाने लगाना। सुरेश अपने काम का सारा सामान ठिकाने लगाकर रखता है, संभाल कर रखना। रुपेश बहुत ज्यादा बदमाशी करता फिरता था, पुलिस ने इस बार ठिकाने लगा दिया है।
0: शाबाश, अब मलाई लाग्यो तिमीहरूले साँच्चै राम्ररी बुझेछौ। त तिमीहरूले यहाँसम्म राम्ररी बुझ्यो होइन?
2: हजुर म्याडम।
0: हामीलाई थाहा भयो मुहावरे के हो, कसरी यसको अर्थ लाग्छ, यसको प्रयोग वाक्यको साथमा गरिन्छ होइन। मुहावरेको शब्द विपरीत अर्थ लाग्छ, वाक्यलाई सुन्दर बनाउँछ, र कतिपय मुहावरा हिन्दी नेपाली दुवै भाषामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबारे तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्यौ जस्तो लाग्यो। र अब हामी मुहावरेको प्रयोगमा के सावधानी राख्नुपर्छ त्यसबारे जान्नेछौ, ठिक छ?
2: हवस् म्याडम।
0: मुहावरेको हम जब भी प्रयोग गर्थे तो हमें ये याद रखना चाहिए, जिस वाक्य में हम उसे प्रयोग कर रहे हैं क्या वो सही अर्थ दे रहा है, क्या वो अर्थपूर्ण है इत्यादि। जैसे एक उदाहरण है, मुहावरा है घी के दिए जलाना, अर्थ होता है खुशियां मनाना। वाक्य देखो, उसने घी के दिए जलाए, और दूसरा वाक्य देखो, परीक्षा में प्रथम आने पर उसने घी के दिए जलाए। हामीले दुईवटा वाक्य देख्यौं, एउटा भयो उसने घी के दिए जलाए र अर्को परीक्षा में प्रथम आने पर उसने घी के दिए जलाए। यो दुईवटा वाक्यमा हामी के फरक पाउँछौ त भन्दा, मुहावरे घी के दिए जलानको सही अर्थ हो खुसिया मनाना। त पहिलो वाक्यमा मुहावराको प्रयोग अवश्य छ, तर वाक्य र अर्थ स्पष्ट भएको छैन, किनकि घी के दिए त जलाए लेकिन क्यों अर्थ खुल्दैन। यसरी नै दोस्रो वाक्य हेरौं त, परीक्षामै प्रथम आने पर उसने घी के दिए जलाए, यस वाक्यमा अर्थ पनि स्पष्ट हुन्छ र वाक्य पनि घी के दिए जलाए मतलब खुसिया मनाए क्यों परीक्षामै प्रथम आने पर। बुझ्यौ कसरी प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ?
2: हजुर म्याडम।
0: तो आप शिवानी बताइए एक मुहावरा और उसका अर्थ।
2: लाल पीला होना, बहुत क्रोध आना।
0: शाबाश, अब आप श्वेता इसको दो अलग अलग वाक्य में प्रयोग करो तो, जैसे हमने किए थे।
1: चेहरा लाल पीला हो गया, रामू ने शाम के कपड़े में चाय गिराने से वो लाल पीला हो गया था।
0: शाबाश, तिमीहरूलाई यहाँ लाल पीला होना का

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से

0: भिजती हैं तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
1: जी।
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?

0: किसी खुरदरी सी शीट की तस्वीर है। इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा।
1: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
0: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
0: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
0: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
0: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं।
3: नमस्कार।
4: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने

0: छात्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, अरे
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो

0: आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
2: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: ए साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
5: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मोहल

0: फूलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
1: है?
0: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
1: अच्छा?
0: हाँ,
1: बहुत बड़ी फौज है।
0: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था,

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ, मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: आश्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: श्रोताले तिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो एनसीआरटी माथि एक प्रायोजित कार्यक्रम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब हजुरहरूलाई सुनाउन लागिरहेका छौं आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी विविध भारती सेवाहरू।

घर आ जाए घिर आए, कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब, अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं, जरा संक्षेप में लिखिए तो ज्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा, आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में, आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई खास याद है, कोई खास बात है तो जरूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गान के बोल लिखे, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में, वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था इसलिए ये गाना यहां पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई लेकिन

आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखिए तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूं, मेरा यहां पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी ये आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि

आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों न एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंची गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं। गीतकार संगीतकार फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सरंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल

बोलते थे और एक परदेसी सामने खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूं, जवाब दे रही हूं सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगलिया चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए चार गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि तीन गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे छह गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। खबर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक क्या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफर आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country. Extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership.

0: सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बाबा अमरनाथ बम बम।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश वाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों

0: से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने

0: आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी लिएर उपस्थित भएका छौं विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू। सर्वप्रथम हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन जनाउँदै सुनाउन लागिरहेका छौं पहिलो नेपाली लोकगीत कलाकार गणेश ढुंगेलको स्वरमा। ताउनु श्रोता, सुनौ यो गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से देशवाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। आज बंगाल की जनता ने मतदान के माध्यम से स्थिति बदल दी है। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। और मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister also urged devotees to take 5 resolutions during the pilgrimage. These include maintaining cleanliness throughout the yatra, strictly following all safety and administrative guidelines, supporting the local economy by spending at least 10% of their travel expenses on local products under the Vocal for Local initiative, gifting a sapling to a sibling on Raksha Bandhan to promote the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, and carrying the spirit of nation first by performing their duties with honesty and contributing to the vision of a Vikasit Bharat. Meanwhile, the annual Sri Amarnath Ji Yatra, which began officially

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। जी हां, और ये कार्यक्रम है आपकी पसंद का, यानी कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके मन के गीत की फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं।

हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, लिख भेजिए, नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldair@gmail.com। और सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, जिसकी फरमाइश हमसे की है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं राजू मिगलानी जी, राजेश वर्मा जी, विजय जी, सीताराम जी, बोधराज जी और साथ ही विजय जी। ये सब सुनना चाहते हैं किशोरदा की आवाज में ये।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत आपने सुना किशोर दा की आवाज में। और हमसे जुड़े हैं हरियाणा से अंकित कांगड़ा जी, मोनी जी, प्रिंस जी, सीताराम जी और साहिल जी। मुझे लगता है कि सब परिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और उत्तम नगर दिल्ली से होली चौक से हमारे साथ जुड़े हैं जयराम खोरवाल जी, सचिन जी, अमन जी, दीपांशु जी। फिल्म हकीकत से गीत को सुनना चाहते हैं जी, पूरी कोशिश। राजेश कुमार चौहान जी जालंधर से जुड़े हैं और आया सावन झूम से सुनना चाहते हैं, पूरी कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले आपके नामों को एक बार सम्मिलित कर लूं। प्रताप वर्मा जी हमारे साथ महावीर कॉलोनी सोनीपत से जुड़े हैं और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। हमारे साथ उषा चंदन जी जुड़ी हैं, मास्टर अशोक कुमार जी और हरजिंदर सिंह भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये सब सुनना चाहते हैं कोई भी गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज में। तो आपकी फरमाइशें आप तक।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे सुन रहे हैं यानी आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके फरमाइशें, आपकी दिल की बात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, फरमाइशों का पिटारा हम तक लगातार पहुंच रहा है। और मोताला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं विजय सुरलकर जी, रतनमाला जी और कुमकुम गुड़िया जी। ये लिखते हैं कि अंशु दीदी, प्रोग्राम हमें आपका अच्छा लग रहा है और जो प्रस्तुति है गीतों की वो भी इन्हें अच्छी लग रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रकाश वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, हम राज फिल्म से सुनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से ये जुड़े हैं। और सब परिवार प्रिंस जी, निखिल जी और यशस्वी जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और गीतों की फरमाइशें भी हम तक आ रही हैं। सतीश अनीजा जी हमसे जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चंडीगढ़ सिटी से ये हमारे

साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं और हम देख सकते हैं कि अब्बासी जी और मुकेश जी और डीके बी परिहार जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज में खूबसूरत गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बन

0: कर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम मन भावन में। हमारे साथ जुड़े हैं गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुधार और सारिका सुतार जी। लिखते हैं, दीदी आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, पेशकश भी बहुत इन्हें पसंद आ रही है। मोहम्मद रफी जी की आवाज में गीत को सुनना चाहते हैं जी, पूरी कोशिश। और देखते हैं कौन हमारे साथ में जुड़ा है। एमडी इरशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं और मरियम जी, शाहजा बेगम जी और इरशाद अहमद शाह जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और पसंद आ रहा है कार्यक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र प्रसाद मोदी जी फिल्म तिरंगा से सुनना चाहते हैं गीत को। रामगढ़ कैंट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जैन जी, अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। लिखते हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? और संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिवियम जैन, मुझे लगता है एक नन्हा श्रोता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। और राशिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आसना जी, नौरीन अंसारी जी, नसरीन जी और मोहम्मद कैफ अंसारी जी भी। मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गीत आपके लिए।
4: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
5: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
6: मेरा दिल।
5: क्या?

दोस्तों, कार्यक्रम मन भावन और जलंधर से हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति मक्कर जी, मन्नत जी, भरत जी, कमल सहनी जी और संदीप जी, और फिल्म जंगली से ये गीत को सुनना चाहते हैं। और धर्मेंद्र छिप्पा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं और भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं। सब परिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। पूजा परिहार जी, ईशान छिम्पा जी, कपिल छिम्पा जी और धर्मेंद्र जी, आप तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है और अभी हमारे साथ जुड़े हैं परमिंदर सिंह जी। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है लेकिन फिल्म चौकीदार से गीत को सुनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं अगर आप सुनवा देंगे तो कार्यक्रम और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। ताज मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं, अहमद जी, सोहिल जी, साथ ही रस क्रिएशन से हमारे साथ एक मेल हमें प्राप्त हुआ है। नवी हसन जी जुड़े हैं और शीशपाल जी हमारे से कार्यक्रम में जुड़े हैं, डीके जी, बबलू जी, साथ ही कुछ लगातार हमारे पास में जो जुड़ चुके हैं उनके भी मेल हमें फिर से प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है नए श्रोता को मौका दिया जाए। सोहम लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुकेश जी की आवाज में एक और अगला खूबसूरत गीत आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है अपनी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। कार्यक्रम मन भावन, जहां पर आपके मनपसंद गीत, आपके दिल की बातें, आपकी फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशल्या देवानगन जी, रोशन लाल जी और हेमलता डिम्पल देवानगन जी। साथ ही हमें मेल प्राप्त हुआ है स्वर्ण सिंह जी का, ये हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ से। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत सिंह जी, राजदीप जी, गुरनूर जी, गुरलाल जी और अविराज जी, मुझे लगता है कि सपरिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप सपरिवार कार्यक्रम को सुनते हैं, जुड़ते हैं। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल जी, सचिन और दीपांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिल्म रोटी से गीत को सुनना चाहते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइशें मैं आप तक पहुंचाऊं। लालगिरी जी जुड़े हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में, गीत को सुनना चाहते हैं। सपरिवार जुड़े हैं, आपको बता दें हम, श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता जी, हीना जी, हर्षित जी और खुशी गोस्वामी जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और जाकिर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं मन भावन कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है और आज की जो पेशकश इनको सुनाई जा रही है वो भी इन्हें बहुत ही पसंद आ रही है। इसी तरह लगातार आप कार्यक्रम में जुड़ते रहें और जैसा कि आप सबने फरमाइश की कि लता जी की आवाज में गीत को आप सुनना चाहते हैं, तो ये लीजिए आपकी फरमाइश आप तक।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम मन भावन में सुरेश नारंग जी का हमें मेल प्राप्त हुआ है। लिखते हैं प्रेजेंटेशन गीतों के साथ बहुत ही शानदार है और शुरू से ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सपरिवार सहारनपुर चंद्रनगर से हमारे साथ जुड़े हैं आशा नारंग जी, आशु नारंग जी और सोनाली नारंग जी के साथ में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही जगदीश जी अभी हमें इनका मेल प्राप्त हुआ है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और माफ कीजिएगा एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं। और जगदीश धाकर जी, श्रीमती रंजू जी, युवराज सिंह जी और शिवांगी जी सब परिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कोई भी गीत अपनी पसंद का यानी मेरी पसंद का ये सुनना चाहते हैं। ओम कुमार जी लिखते हैं, अंशु बहन जी खूबसूरत पेशकश, फिल्म गहरा दाग से कार्यक्रम में इस गीत को सुनना चाहते हैं। और साथ ही शेख जी और अदनान जी और बबलू जी भी महाराष्ट्र से कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जुड़े हैं हमारे साथ उग्रसेन यादव जी, लिखते हैं राम राम जी, राम राम, और लिखते हैं कि हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, प्रेम पर्वत से गीत को सुनना चाहते हैं, नई दिल्ली से जुड़े हैं। शकुंतला यादव जी और गरिमा जी भी कार्यक्रम को सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गिरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, कार्यक्रम सुन रहे हैं और रिमझिम गिरे सावन किशोरदा और लता मंगेशकर जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। मोहम्मद सदीक जी जुड़े हैं, साथ ही कुणाल सिंह जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, विजय महोबिया सुन रहे हैं कार्यक्रम और गंगाधर जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। ओम कुमार जी, जैसा कि हमने बताया इनका फिर से हमें मेल प्राप्त हुआ है, तो चलिए आपकी फरमाइशें आप तक जल्दी से पहुंचा देते हैं। राजवीर सिंह जी और जगदीश जी भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और हमें महाराष्ट्र से कुंडलवाड़ी से मेल प्राप्त हुआ है गंगाधर जी का जो अपनी शायद सपरिवार सुन रहे हैं विजय लक्ष्मी जी के साथ में कार्यक्रम को सुन रहे हैं और साथ ही जॉन द कैस्ट्रो का हमें मेल प्राप्त हुआ है कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। राम कुमार जी का मेल प्राप्त हुआ है लिखते हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है लेकिन हमारे गीतों को शामिल नहीं किया जा रहा है जी। पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि जो नाम मुझ तक पहुंचे हैं मैं उन्हें आप तक जरूर पहुंचाऊं बस वो नाम ना रह जाएं। निसार अली जी लिखते हैं नमस्कार आरजे मैडम जी, जी नमस्कार। और अल्तमश जी का भी हमें मेल प्राप्त हुआ है साथ ही एसएम जावेद जी का, कुणाल सिंह जी का और ये हमें मेल प्राप्त हुआ है कुणाल जी का हमने आपको बताया और साथ ही रणबीर जी का ये हमें मेल प्राप्त हुआ है। सुरेश जी का हमें एक बार फिर से मेल प्राप्त हुआ है गीत सुनना चाहते हैं आइए इनके गीत आप तक पहुंचाएं।

जय हिंद फौजी दोस्तों, सौर्यगाथा में आज आप सभी के साथ मैं हूं आप सबका दोस्त दयानंद। फौजी दोस्तों, गांगुली बॉलीवुड इतिहास से सबसे प्रिय पुरुष पार्श्व गायकों में से एक महान गायक किशोर कुमार के बेटे, गायक कलाकार अमित कुमार का जन्मदिवस है। इस अवसर पर सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे अमित कुमार के जीवन करियर के बारे में और साथ ही साथ सुनेंगे उन्हीं की आवाज में हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुने, ये गीत जो सन 1983 में आई फिल्म रोमांच का है, आनंद बख्शी द्वारा लिखे इस गीत को युगल आवाज दी है अमित कुमार और सुश्री लता मंगेशकर ने। संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

तीन जुलाई यानी आज ही के दिन सन 1952 को जन्मे अमित कुमार महान गायक किशोर कुमार के बेटे हैं, ये तो सब जानते हैं। अमित कुमार ने एक प्रतिभाशाली गायक, संगीत निदेशक और लेखक के रूप में अपनी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी मखमली आवाज, अविश्वसनीय गीतों, अविस्मरणीय प्रदर्शनों और संगीत के प्रति जुनून से भरे हुए उनके जज्बात दुनिया भर के प्रशंसकों को के जुबान पर है। अमित ऐसे परिवार में पले बढ़े थे जहां संगीत जीवन का एक तरीका था। बहुत छोटी उम्र से ही गीत संगीत और दोनों से घिरे हुए थे। बहरहाल आइए अगला गीत सुनते हैं, गीत जिसके संगीतकार, रचयिता और गायक कलाकार किशोर कुमार हैं। फिल्म का नाम है दूर गगन की छांव में।

हो जी दोस्तों, अमित कुमार के विश्व प्रसिद्ध गायक पिता किशोर कुमार सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि अभिनेता, निर्देशक, लेखक और निर्माता भी थे। इतनी समृद्ध संगीत विरासत के साथ यह स्वाभाविक ही था कि अमित अपने पिता से नक्शे कदम पर चलते रहे। अमित ने बहुत छोटे उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। पहले कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव या फिर स्थानीय उत्सवों में बाल गायक के रूप में गाने लगे और जल्द ही उनकी अनोखी आवाज वसेली के लिए जाने जाने लगे। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले अगला गीत सुनते हैं, यारा दिलदारा से। मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत रचना को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने और अमित कुमार के साथ आवाज दे रहे हैं भूपेन्द्र सिंह।

सारी सारी, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, उस पर चलती रेलगाड़ी, उसमें बैठे मियां बंगाली, उनके साथ उनकी साली देती है वो उनको गाली। आई एम वेरी वेरी सॉरी।

दोस्तों, बंगाली सिनेमा के जगत के महानायक उत्तम कुमार द्वारा आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में बालक अमित कुमार को लोगों ने गाते देखा सुना तो चमत्कृत रह गए। पिता किशोर कुमार ने भी बच्चे की प्रतिभा को समझा और अपने साथ मुंबई ले आए। किशोर कुमार ने अपने बेटे को लेकर दो फिल्में बनाई, दूर गगन की छाओं में और दूर का राही, जिसमें अमित ने एक गाना गाया था जो एडिटिंग में कट जरूर गया, लेकिन अमित की आवाज में जो दम था वो किसी से छुपा नहीं। उस जमाने के संगीतकारों ने अमित कुमार में विशाल संभावनाएं देखी। चर्चा आगे जारी रहेगी, इससे पहले आइए सुने आनंद बख्शी की गीत रचना फिल्म बालिका वधू से अमित कुमार के स्वर को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

अमित कुमार ने 70, 80 और 90 के दशक में संगीत उद्योग में काफी बुलंद पहचान बनाना शुरू कर दिया था। उनके गाए ढेर सारे गाने एक के बाद एक हिट होने लगे थे। ये सिर्फ उनकी अद्भुत आवाज ही नहीं, उनका वास्तविक व्यक्तित्व भी था। अमित कुमार अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद विनम्र और जमीन से जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। वैसे वे काफी रिजर्व हैं, लेकिन प्रशंसक इस बात की सराहना करते नहीं थकते कि कैसे वे सबसे मिलने के लिए समय निकाल ही लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर सांगीतिक कार्यक्रम। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सन 1982 में बनी फिल्म तेरी कसम का बेहद प्यारा और रोमांटिक गाना, जिसे अमित कुमार ने अपनी आवाज दी, संगीत आर डी बर्मन का, और इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी।

अब कार्यक्रम के अंत में दोस्तों एक और गीत आइए सुने, जो आनंद बख्शी की गीत रचना है। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आवाज दे रहे हैं अमित कुमार, और फिल्म का नाम है लवर्स।

इसी गीत के साथ ही आज का सौर्य गाथा यहीं समाप्त होता है। हमारी आप सबों से फिर मुलाकात होगी एक नए व रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

भवन चोक मगिबोंगबा यामबेओ तेंदिंग नागु अतिले गुफा लंबा तेंचाहारे यमजिक लक को सबा मेघोसुरा के रबवा हिकिरिके नेचिगेक पेमो कापिया लंबेरे पांचेखु खेन वये सुखिम नु बंगाल लुम्मोबा केम्बा नाचइंग कन नाचइ इन थे वये बेभेले सुखिम युक्फो युक्तेंदिंग गिबोंगबा एसके खानित पा टैक्सीहा काउंटर साइन परमिट नामधा बंगाल ओ पी मासी के बोंगबा नाचइंग युखु कपमो सुमिहांग बंगाल रेतेंदिंग पिरुआंग तगीब खानित हेंचिंग सुमसी वयग्र आल्लो फोसुआंग हेंचिंग तुक्सी परमिट के बोंगबा तामदमवा पिरु कंटेंदिंग इसिक आल्ला सुखिम्बा एसके खानित लादाहा सिलीगुड़ी ओनो कुदोकमा लोकमा मेघोबा पोखे खेले नेछि खामगुबा कापिया लंबे इन छेन्ना के धुम्बा पोंग हेकिरिके सुमसिगेक पेमो ग्लेशियल लेक आउटब्रस फ्लॉट जीएलओएफ हेंचिंग नेची निबोंगांग सुमसी अतिले यकपोंगे मारम थिबोंग एनएच 10 इन फेटलांदु अंग सुखिम खामगु ताम पेक माओ जेम भो केतु हेकियांग तुतु तामंगरे नामधा बंगाल सुमिहांग तुतु अधिकारी इन अबांगे तेंदिंग बा नोगप्रे लागी यम्मो अंग नोगेन तुंतु अंगवा आइन इनुदिमा सुनिया सुब्बा हातले मिमासिंगेन कांगसारे तकमा ताक्तु अंगवे खुने मल्ली चेकपोस ओ लामधान मेदाक्तु लामधान केदाक पहा ओ सोरेंग च्याखुंग तेंगप्पा पांगमिहांग तुतु आदित्य गोले पांगदंग चुम्भोबा वे वे पासिंग पदांग हा मेवे इनु दुम्बा सुनिया सुब्बारे अंडर 15 सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेंचिंग नेची निबोंगांग तुक्सी अतिन जुन लाव येन्नीत थिबोंगांग फांगसी ओनु निबोंगांग फांगसी खराक जलंधर पंजाब ओ पुखे अंगवे खेमो कांगसारे ताकमा नादु अंगवे कन लामथान ताकमा थिम्बे इन सोरेंग थुम पिकपक चुम्भो तंगदंग सुखिम एम्यूटर पिकपक चुम्भोरे तंगमेसियांग तंगही जोगेसियांग वे थिम्बेओ यरिक तेंगप्पा यंगमीभा मिजुपसे आंग मेवे हेके आंग केरेक्ले खुनी सुसांगो तंगदंग ताये मो अकेरिकी तगी पोरे ओ लरिक हांगवा मुई मेबिरु इनुदिमा सुनिया कपी खर्का पेघा गौं सोरेंग थुम के युंगबा हांगयम्बु मंगल सुब्बानु सुस्मिता छेत्री सिरे ए मसाभांग थाइंगवा मातुमिहांग तुति नरेन्द्र मोदीनु खुने कुंजुम जापानीज मातुमिहांग सनाई थकाईची नेमांगरे पाकिस्तानी थ्यांगवा बहा थुम इसिक पाखालो मसीगे भोंगबा पांचुम चुगेसु आइन तेमेनो थिबोंगांग तुक्सिगेक पा इंडिया जापान एन्युअल समिट ज्वाइंट स्टेटमेंट चुमलुंग मेयुंगे अंगवे खुंचिलुमो मेटलिंग के बोंगबा पहालगम बिफ्युंग रे पानपोखे लामलो बहारे केरेक निंगसिला मिजोगुआंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट यनित निबोंगांग फांगसी लावा जुलाई हेन छिंग नेची निबोंगांग ngasiओ मेदोंदु अंगवे हेकिरके कनेमंग लाजेरे मेटलिंग यनित थिबोंग नोवेम्बर लावरे येन थ्यांगवा बहा पाखा लो मसी तेंदिंग चुगेसु हेकिरके तांदिक तुतु मोदी जी राजस्थान नु गुजरात खामगु कंचे के बेग पपुख्यांगवा कुदाकन हेमो मातुमी हांगरे कुसंग टर्मिनल जंगहिम अतिन जोधपुर हिक्लायेप यारी पोख्यांगवा खेन्नांग सुनाहन हन्दुबा पोख्यांगवा आखेप सुमला अबछे इंगहंग चुरे अल्लो आखेप सुमला अबछे इंघंग अल्लो इंघंग इगंग सदे हेके ए सम्मेगेन सम्लेंग हा तुंदुम सिम्बे थिक्सिकेक पे मो सम्मेपा खेमसिक याक्थुंग रे कु इकला उ कुसिंग नितुमलो युमा मांग लरी सुसिंगवा बा सामलो इन खेपसुमांग अनि केरेक कुदंग कुदंग सामलोरी रा चांगजांग बानु सुसिंगवा बा पुखिरो सामलो इन खेपसुमांग

0: ए कुसेनु कुरेन हिरेबेरो निसामिन सकमा पोखेबेरो ए तायमले खाओ केमाक पासे थुम्युक पासे ई के गप पासे ए फेजुमनु फेया युतमे ओ याजाहा नुरिक लेतामे ओ ए फुंसारे कुङ केबोङ बासे खेमसिके पोङमा चाहा बासे ए नहिनु सिखुम फुखेमे ओ तायमले थुमिया लोन्दामे ओ ए निसम्मी मेनी मेबोङनेन अल्लो मेङ्गर हिङमन कुय थक पोङलो ए खामाकमा लुम्मु खाओत लपमा सेमी इन हाम तामसिन चोकमा ए कखेक्वा फुङिन फेक्ते बारो नुनाम फुङनु बा कुनाम सेरो ए कुजोक थिम केटले कुजा थोक्लो निसामिन हिङले सेमी ओतलो ए थुम्सा इ केपमा सक्निम चोकमा निसामिन पातले लाजे ओपमा ए निसामले कोकमा काक्तु बारो याबकले मिङ्सो याक्तु बारो ए नहिनु सिखुम फोमा बोङ्लो मेङ्गर यम्मु लाजो पोङ्लो ए मेम्बापमा पानिन पेन्दे बेसाङ सुत्लानु पेन्सिङ पुरे बेसाङ ए केरेक्नु लेप्मी नाका बारो आदा
1: थिम्बे इले कुजुछिङ हेमो याक्थुङ सुवाङ रेन थाक्युदिम बा ख्याली साम्लो आघेप सिमला अबछे कन साम्लो तङदङ आइन बा थिम्बे इन कमो एचुत आलो सफा आङ पाङ्गेन मिन्तुक थिम्बे हेक्सिन यम्मो तान्दिक बा खा कन यमसिगाङ याक्थुङ थिम्बे इने अदङ बा अदङमा तगि दारुम्बे आङ तेये खेम्बा दाङगा बिन्दु याक्थुङमा सेमु इ नाका सेमु इ सिवारु
2: जुजाबो दिलुंठे खा गातुई छमची देचिका फीसम के छुजे ngा दुंगदी फी लेपचा लिंगे जुइंगेन से लो थारिंग लक्तिरा ngा रिंजिंग लाडन देजो पो चादे मीडियम वेव की मीटर नीजा चुसुम चुजर खेसुम दिन किलोहर्स चिकतों जिप्याशी एफएम खाचे जेंगा मेगाहर्स चिग्यासुम दिले न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप नले पंगेन मिंटो डेजों पे लेरिम ख्याप्टा समना दोई थारिंग सापासा नमलो मिफो तालो दौ पे की छे चपके चिलिंग नीतो निशु चाटु लोई दौ दिम्पे की छे सुमी क्यों खालो गची लेरिम समनादि जुयेपे फाम लेंगे था जेम्बो थम चे खापुलो फीसम दिले था लेरिम नंगलो गासु शुजी थारिंग गिंगाची लेरिम की तंडल गोब्याम चुकतुई मेलम थपकी थुजी शक्या रिक्सुले

0: साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में

0: लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताहरूले हाम्रो यो प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघाको 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। आदरणीय श्रोता, समय यस बेला साँझको 6:05 भएको छ र अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रममा उपभोक्ताहरूको सन्तुष्टि नै ग्वालाको सबैभन्दा ठूलो पुञ्जी हो विषयमाथि प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गत फोन इन कार्यक्रम।

0: सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: Prime Minister will also be visiting.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर

0: कलेक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।